0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ظفر شیخ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے. ایک تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ اچھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا ہی رکھے. اس وقت ڈنمارک کی صورتحال یا ڈنمارک کا موسم اگر آپ کو بتانا چاہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے اور موسم بھی اس کے ساتھ ساتھ سرد ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ستمبر کا مہینہ ابھی شروع ہونے والا ہے اور اس میں تبدیلی شروع ہو جائے گی، سردیوں کی آمد آمد ہوگی. اور پاکستان میں تو ابھی خیر گرمی ہے لیکن رات کو کہا یہ جاتا ہے کہ اچھا موسم ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان میں جو نظام زندگی ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے یہاں ڈنمارک کی نسبت. ڈنمارک میں ہم یہاں گو کے یہ ٹھنڈے ممالک ہیں اسکینڈینیوین، اور اس میں ہم جس طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں یہاں سسٹم بہت اچھا ہے، ہمارا فیملی سسٹم بھی، کام کا سسٹم بھی، اور موسم کے حوالے سے بھی انہوں نے تمام سہولیات ہم لوگوں کو میسر کی ہوئی ہیں، جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تو ہیں ہی، لیکن ان لوگوں کے بھی ہم، ان حکومتوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں. تو مدر ناظرین، جیسا کہ انسانی زندگی میں ایک ہجرت ایک لازمی امر ہوا کرتا ہے، کیونکہ ہجرت چاہے وہ کام کے حوالے سے، چاہے وہ کسی خدمات کے حوالے سے یا کسی ذمہ داری کے حوالے سے، یہ ایک لازمی جز ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں. تو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو. تو آج کے پروگرام میں میری ایک ایسی شخصیت جو کہ ایک بڑی معزز اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے ایک مسیحا کی صورت اختیار کی ہوئی ہے، میری مراد ڈاکٹرز. ڈاکٹر جو ہوتا ہے، جو کہ ہمیں اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی انسانوں کو جو بھی مرائض بیماریاں یا جو کسی قسم کے بھی مسائل جو درپیش ہوتے ہیں ان کا مداوع کرنے کے لیے یہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے یہ آج ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہم ایک ایسی شخصیت کو پیش کریں جو کہ میڈیسن کے ساتھ منسلک ہیں. میری مراد ڈاکٹر محمد سلمان خان اس وقت میرے پروگرام میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر سلمان پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. ان شارٹ تو میں یہی بتانا چاہوں گا، لیکن باقی تفصیل یہ خود اپنے زبانی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اور آج کے پروگرام میں میڈیکل کے حوالے سے بھی بات ہوگی، ان کی لائف کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے انہوں نے ہجرت کی اور یہاں ڈنمارک تشریف لائے. تو یہ سارا سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام حسب معمول جس طرح آپ دیکھتے ہیں اسی طرح دیکھیں گے اور سنیں گے بھی، اور اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور اس کو کے لیے فیڈ بیک بھی آپ دیں گے. تو ڈاکٹر سلمان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم کی آپ زینت بنے اس پروگرام میں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر سلمان کیا ہیں اور کہاں سے، یہ جیسے میں نے بتا تو دیا پاکستان سے ہیں، لیکن تھوڑی سی ڈیٹیل میں اگر جانا چاہوں تو آپ بتانا چاہیں گے کہ پاکستان کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں اور وہاں آپ نے اپنا بچپن، لڑکپن اور اس وقت جو آپ بھرپور جوانی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو یہ سارا سلسلہ یا سارا ٹینور آپ نے کیسے گزارا؟ جی
1: السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. بیسیکلی میں پاکستان میں خیبر پختونخوا صوبے سے اور کوہاٹ سے بلانگ کرتا ہوں.
0: جی
1: میری جو اسکولنگ ہوئی وہ کوہاٹ میں ہی ہوئی میٹرک تک، اس کے بعد پھر میں پشاور شفٹ ہوا، ایڈورس کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا پری میڈیکل میں.
0: ٹھیک.
1: وہاں پہ پھر میں نے دو سال فردر ایف ایس سی کی، پھر میں نے اس کے بعد پاکستان میں جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل کا وہ میں نے پھر دیا، سلیکشن ہوئی میری میڈیکل کالج میں. تو کوہاٹ کے جو میڈیکل کالج ہے، خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی ایک افیلیٹڈ کالج ہے، وہاں پہ میری میرا ایڈمیشن ہوا ایم بی بی ایس میں 2017 میں. तो उसके बाद फिर 5 साल मैंने MBBS की
0: लेकिन मेडिकल मैं की। थोड़ा सा मदद आपको रोकना चाहूँगा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये गुजारिश की या अर्ज़ किया इंट्रो में भी कि बचपन, लड़कपन और जवानी ये तीन अदवार होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, एक बंदे की ज़िंदगी में, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएं बचपन आपका कैसा गुजरा?
1: बचपन मेरा काफ़ी अच्छा गुजरा।
0: शाही थे, शरारती थे या
1: नहीं? शाय था मैं।
0: अच्छा।
1: मतलब शरारतें वगैरह इतनी नहीं, क्रिकेट का शौक था काफ़ी।
0: अच्छा।
1: क्रिकेट खेलता था, मैट्रिक तक काफ़ी क्रिकेट खेला है, और उसके बाद जब हॉस्टल शिफ्ट हो गए तो फिर जो है ना उसके बाद ये क्रिकेट वगैरह ये सारा क्रेज़ फिर ख़त्म हो गया, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान हो गया।
0: अच्छा।
1: तो बस एक वो था मेरे वालिदैन का एक ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं।
0: अच्छा।
1: और उस उनकी दुआओं से और मेहनत से मैंने फिर इस कैरियर को चूज़ किया और इसको परस्यू किया।
0: अच्छा, यहाँ ये सवाल अक्सर ये होता है और होता यही है कि पाकिस्तान में जितने बच्चे होते हैं जब वो स्कूलिंग मुकम्मल करते हैं उसके बाद फिर ज़ाहिर है मेट्रिकुलेशन या उसके बाद इंटरमीडिएट, तो फिर उनके दिमाग में या उनके जहनों में ये तासर डाल दिया जाता है कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने किसी ऐसे शोबे में, यानी स्पेसिफिक।
1: ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है, ये पाकिस्तान में ये अभी तो खैर इस ट्रेंड को चेंज किया जा रहा है,
0: ठीक है,
1: लेकिन पहले ये था कि पाकिस्तान में लोग ये डॉक्टर जो एक नाम है ये एक एक बहुत नोबल प्रोफेशन है जिसको लोग बहुत इज्जत से देखते हैं और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो इस फील्ड में आते हैं जो लोग। तो हमारे वालिदैन, मेरा तो ये केस था कि हमारे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं था मेरे पहले, मतलब मैं अपनी फैमिली का पहला डॉक्टर हूँ। तो वो वही बात है कि वो जो एक एक ट्रेंड बना हुआ था कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, तो उस हवाले से फिर हमारे माइंड में डाल दिया जाता था।
0: अच्छा।
1: कि आपने बड़े होके क्या बनना है, डॉक्टर बनना है,
0: ठीक है।
1: तो उसके बाद इंसान को खुद भी इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है, मुझे खुद भी फिर इंटरेस्ट था इसी चीज़ में, मुझे सर्जरी में इंटरेस्ट था।
0: अच्छा।
1: तो अभी तो खैर बहुत ज़्यादा माहौल चेंज हो गया पाकिस्तान में, अभी तो ये बाकी जो फील्ड्स आ रही हैं ऑनलाइन जो ये कंप्यूटर साइंस और ये सारी चीज़ें, तो लोग इसकी तरफ भी काफ़ी उन लोगों का रुझान है, लेकिन वो जो एक नाम है डॉक्टरी का वो अभी भी पेरेंट्स के ज़हन में।
0: अच्छा, मैट्रिक में गए, इंटरमीडिएट किया या उसके बाद फिर प्रोफेशनल, वो भी बात करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि जहाँ भी आप जाते हैं नई जगह पे नए लोग मिलते हैं आपको, नए दोस्त मिलते हैं, तो उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? कि स्कूलिंग के बाद जब बंदा थोड़ा सा लड़कपन में आता है तो फिर नए नए लोग या दोस्त मिलते हैं, तो कैसा ट्रेंड था इसमें?
1: देखें शेख साहब, तीन स्टेजेस होते हैं।
0: जी जी।
1: पहला होता है स्कूलिंग।
0: जी जी।
1: जो स्कूलिंग में आपकी जो क्लास फेलोज होते हैं, दोस्त होते हैं,
0: जी,
1: वो उनके साथ आपने काफ़ी टाइम गुजारा होता है,
0: ठीक है।
1: स्कूलिंग के बाद फिर आ जाता है एक शॉर्ट सा फेज होता है जिसको कहते हैं प्री मेडिकल या प्री जो FSC होती है, इंटरमीडिएट होता है,
0: ठीक है,
1: वो होता है 2 साल का। तो उसमें जो आपका इंटरेक्शन या दोस्ती जो बनती है वो इतनी आगे तक नहीं जाती,
0: ठीक है,
1: until and unless कि वो जो आपके जो क्लास फेलोज हैं वो आपके साथ फर्दर जो है ना आगे किसी मेडिकल कॉलेज में क्लास फेलोज बन गए। तीसरा फेज़ ये होता है जो आपकी यूनिवर्सिटी फेज होता है।
0: अच्छा।
1: वहाँ पे जो आपके दोस्त बनते हैं, जो ताल्लुक बनता है, वो फिर क्योंकि आपके प्रोफेशन के साथ वो सारे रिलेटेड होते हैं तो आपका इंटरेक्शन चलता रहता है कॉलेज के बाद भी आगे तक। तो मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं वो मुझे अभी तक उनके साथ मेरा है कांटेक्ट है कुछ दोस्तों के साथ, और फिर जो है ना अभी जो मेरे MBBS के जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर्स हैं उनके साथ मेरा काफी अच्छा था।
0: अच्छा, बचपन पे के या उसके स्कूलिंग के या मैट्रिक के या इंटरमीडिएट के इस दौर के इस अदवार की कोई ऐसी कोई यादें जो आप समझते हैं कि ये वाकई नाकाबले फरामोश हैं? बाज़ दफ़ा नेगेटिव भी होती हैं, बाज़ दफ़ा पॉजिटिव भी होती हैं, मिक्स होती हैं, तो वो अगर आप शेयर करना चाहेंगे।
1: स्कूल याद आता है, स्कूल का जो टाइम था।
0: अच्छा।
1: हमारा वो बड़ा अच्छा टाइम था, ये जो आजकल के जो डिजिटल ये फ़ोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, ये चीज़ें थी नहीं उस टाइम हमारे टाइम पे, हमने तो ये चीज़ें कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आके ली हैं, तो वो एक अच्छा टाइम था। और वहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि क्रिकेट में खेलता था, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा टाइम था, मैं भी याद करता हूँ कि वो हम رمضان میں بھی اتنا وہ کریز ہوتا تھا ہمارا بچپن میں کہ رمضان ہوتا تھا اور رمضان میں بھی ہم جا کے گرمی میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے گراؤنڈ میں. اور
0: کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ کوئی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی آؤٹ کلاس تھا اور اسٹڈی میں بھی یا ایکٹیویٹیز میں بھی یا اس میں آپ اگر اپنا بتانا چاہیں کہ
1: میرا یہ تھا کہ میرے میٹرک میں جو بورڈ تھا نائنتھ میں بھی میں نے ٹاپ 5 میں آیا تھا میں.
0: اچھا.
1: اور میری نیوز پیپر میں تصویر آئی تھی.
0: اچھا.
1: اس کے اعزاز میں نائنتھ میں بھی آئی تھی اور میٹرک میں بھی آئی تھی.
0: اچھا.
1: اور میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں کہ ہمارے جو اسکول کے جو ٹاپ کلاس جو آؤٹ اسٹینڈنگ بچے تھے وہ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں دو تین بندوں کو وہ میٹرک کے بعد پیچھے رہ گئے.
0: اچھا.
1: فردر وہ مطلب ہم میں اپنا بتاؤں تو میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, ٹاپ 10 میں آنے والا بندہ تھا. پھر وہ نائنتھ میٹرک میں نے تھوڑی زیادہ محنت کی تھی تو وہ میرے ساتھ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز والے جو بچے تھے تو وہ ابھی ان کی کوئی فردر جو ایجوکیشن ہے جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے تو وہ اتنا آگے نہیں جا سکے.
0: کوئی نہ کوئی
1: وجوہات ہو سکتی
0: ہیں. ٹھیک ہے.
1: تو یہ
0: اچھا کے پی کے کا سسٹم پنجاب کی نسبت آپ کیا سمجھتے ہیں یا اوور آل اگر آپ سے میں پوچھنا چاہوں پانچوں جو صوبے ہیں یا پانچواں بھی بلتستان بھی ہم کہتے ہیں نارمل تو چار ہی ہم کہتے ہیں پاکستان کے صوبے ہیں, اوور آل اگر آپ سے میں پوچھنا چاہوں تو کیسا مطلب ہے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے یا اوور آل ایجوکیشن کے لحاظ سے کے پی کے کا سسٹم؟
1: کے پی کے کا سسٹم ایجوکیشن کے لحاظ سے اچھا ہے شیخ صاحب. باقی پنجاب کا مجھے آئیڈیا ہے, باقی صوبوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے مجھے. لیکن اگر کمپٹیشن کی بات کی جائے تو پنجاب میں زیادہ کمپٹیشن ہے نسبت کے پی کے.
0: اچھا.
1: کیونکہ پنجاب کا جو ایریا ہے, پنجاب کی جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہے, تو وہ جب میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے یا فار ایگزامپل آپ بورڈ کی بات کر لیں تو وہاں پہ پنجاب بورڈ تھوڑا سا میں کہہ لیں کہ تھوڑا سا کمپٹیشن وہاں پہ زیادہ ہے مارکس لینے کا اور یہ چیزوں کا. جی.
0: اچھا. پاکستان کا جیسے کہا جاتا ہے کہ اوور آل اگر میں کہنا چاہوں تو کافی تعداد میں بچے جو ہیں اسکول نہیں جا سکتے, اس کے پیچھے دیر آر سم ریزن بیہائنڈ دس. کے پی کے میں کیسا یعنی لوگوں کا رجحان ہے والدین کا کہ وہ اپنے بچوں کو کام پہ لگائیں یا تعلیم دلوائیں؟
1: شیخ صاحب ساری بات جو ہے نا وہ ریسورسز کی ہے.
0: اچھا.
1: اگر فار ایگزامپل ایک انسان کے پاس ریسورسز ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تو ہر بندہ یہی چاہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے.
0: اچھا.
1: ان کو ایجوکیٹ کرے, ان کو ایک اچھی جگہ پہ. ہر والدین کا یہ ایک خواب ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی جگہ دیکھیں. لیکن پرابلم ساری وہی ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں, اور جہاں پہ ریسورسز نہیں ہیں وہاں پہ چائلڈ لیبر آ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں جو جس طریقے سے وہ سروائیو کر رہے ہیں. تو اگر ریسورسز ہوں اور اگر سسٹم ٹھیک ہو
0: اچھا
1: تو یہ تو ہر بچے کا حق ہے کہ وہ تعلیم.
0: اچھا. آپ کے دور میں آپ کا جب اسٹڈی ٹائم تھا اس وقت ریسورسز کم تھے جیسا آپ بتا رہے ہیں یا ابھی جو صورتحال ہے کرنٹلی اس وقت کیسی صورتحال ہے اگر کمپیئر آپ کرنا چاہیں؟
1: کمپیریزن کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے ٹائم میں اتنا رجحان نہیں تھا.
0: اچھا.
1: مطلب اتنا ٹائم گزرا نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی چینج ہوا ہے اس ٹائم میں. ابھی زیادہ تر لوگ پڑھائی کی طرف جا رہے ہیں. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اپنی ہی
0: اس کے پیچھے کیا ان کے ریسورسز بڑھ گئے ہیں یا حکومت وقت جو صوبائی اس میں وہ اس کی ان کی اسسٹ کر رہے ہیں ان کو کہ یا ان کو کر رہے ہیں؟
1: اصل میں حکومت کا بھی تھوڑا بہت ہاتھ ہے اس میں. اسکولس کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کیا ہے اور باقی تھوڑا سا جو ماحول ہے جو جس طریقے سے جو آج کل چل رہا ہے سب کچھ تو اس حوالے سے لوگوں کا رجحان اسٹڈی کی طرف جا رہا ہے. اور دوسری بات ہمارے ٹائم میں تو یہ تھا کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ہی کاروبار میں میٹرک تک تعلیم کروا کے ایف ایس سی تک اور اپنے ہی کاروبار میں ان کو کر دے. لیکن ابھی یہ چیز تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے.
0: اچھا. ہاں اچھا. اس میں اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں میل یا فی میل اس میں زیادہ ٹرینڈ کس طرح ہے؟ یہ میل کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟
1: جی وہ تو انفارچونیٹلی ابھی بھی میل کو زیادہ پریفرنس ملتی ہے خاص کر کے پی کے میں.
0: اچھا. मतलब इसके पीछे वही वजूहत के फीमेल को बस लड़कियों को या ख़वातीन को घर तक महदूद होना
1: असल में इसको अगर कोई नेगेटिवली लेना चाहे वो नेगेटिवली भी ले सकता है, कोई पॉजिटिवली लेना चाहे वो पॉजिटिवली भी ले सकता है। अच्छा, मैं ये
0: कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे?
1: मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह करूंगा कि हमारा जो जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तरीके से जो है ना जो इनसिक्योर हैं फीमेल्स, तो उस हवाले से अगर मैं सोचूं तो उस हवाले से फीमेल्स को घर पे ही रहना और उनको जो है ना सिक्योर रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इस चीज़ को नेगेटिवली लें तो वो फिर इसी चीज़ में आता है कि यार आप जो है ना फीमेल्स पे दबाव डाल रहे हो, उनको जो है ना आप घर में बांध के रख रहे हो, बंद करके रख रहे हो। लेकिन ये दो पहलू हैं, ये इंसान की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से सोच रहा है। तालीम देनी चाहिए फीमेल्स को, मैं ये इस चीज़ को
0: लेकिन ज़्यादा फैक्टर यही बताया जाता है कि इनसिक्योरिटी,
1: इनसिक्योरिटी
0: तो वो तो पूरे पाकिस्तान में इसी तरह ही है ओवरऑल अगर कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आपने तालीम मुकम्मल की, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हुई इसमें मेडिकल ब्रांच में, तो वहाँ कैसा तजर्बा रहा आपका? और यानी ये अगर मैं पूछना चाहूँ कि वहाँ भी टफ कंपटीशन था?
1: जी, अच्छा। मेडिकल कॉलेज में मैं आपको बताऊँ कि जब हम मेरा एंट्री टेस्ट था तो तकरीबन हम केपीके में सिर्फ, अभी तो चेंज हो गया सिनेरियो चेंज हो गया, हमारे टाइम में सिर्फ केपीके में तकरीबन 48,000 बच्चों ने अप्लाई किया था।
0: अच्छा।
1: और उसमें तकरीबन 2,000 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। 2000 जी,
0: 2000
1: जी।
0: अच्छा।
1: और मेरा उसमें नंबर था, जो मेरिट नंबर था वो 444 था,
0: यानी वो पहले
1: 2000 में जी,
0: 2000 में।
1: तो उसके बाद अच्छा। एक तो ये टफ फेस था।
0: अच्छा।
1: फिर जब मेडिकल कॉलेज में इंट्री हुई है तो जो डॉक्टरी की पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा टफ कोर्स है।
0: ठीक है।
1: उसमें ये नहीं है कि मतलब कोई जुगाड़ करके या कोई चीज वो चीज़ें नहीं हो सकती उसमें। ठीक है जी। उसमें आपने हम हर साल जो हमारा प्रॉफ होता है, प्रॉफ उसको हम एग्ज़ाम को कहते हैं, प्रॉफ वन, प्रॉफ टू, प्रॉफ थ्री, इस तरह। तो हम जब हमारे प्रेप्स होते थे, छुट्टियां होती थी 3 महीनों की पेपर्स एग्ज़ाम से पहले, तो तकरीबन हम 14-14, 15-15 घंटे पढ़ते थे।
0: अच्छा।
1: दिन में जी, तैयारी करने के लिए। और काफ़ी बाकी जो इन्जॉय भी बहुत किए, कुछ लोग होते हैं वो जो जब यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं तो सिर्फ किताबी कीड़े बन जाते हैं, और ये बात अच्छी बात नहीं है। इंसान को करिकुलम में भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें ग्रूम होता है इंसान।
0: जी जी।
1: तो मैंने सोसाइटीज वगैरह ज्वाइन की कॉलेज में, और अच्छा, काफ़ी
0: वर्कशॉप्स वगैरह भी होती,
1: वर्कशॉप्स होती थी जी, और काफ़ी इवेंट्स मैंने ऑर्गेनाइज करवाए।
0: अच्छा।
1: तो इस हवाले से मैंने काफ़ी इंजॉय की।
0: मतलब इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में
1: जी मैंने बहुत की
0: थे। ठीक। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी कि इस प्रोफेशन को पास करने में मेडिकल?
1: असल में शेख साहब, शौक हो ना इंसान को तो वो फिर मज़ा आता है उसको पढ़ाई करने में।
0: ये घर की तरफ से भी एक था।
1: हाँ,
0: ये आपने
1: वो तो सोसाइटी जो प्रेशर है वो डॉक्टर बनने का, वो जब आप मेडिकल अच्छा। टेस्ट पास कर लेते हो ना तो फिर तो आपने बनना ही बनना है, फिर तो आपने उस चीज़ को आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि बहुत मेहनत लगती है।
0: और ये ओवरऑल टोटल कितना था टेन्योर?
1: 5 साल का होता है।
0: 5 साल का।
1: असल में हमारा एक वो हो गया था बीच में, कोरोना आ गया था, आपको याद
0: होगा।
1: थर्ड ईयर में हम थे तो हमारा कोरोना आ गया था, 1 साल हमारा उसमें जाया हुआ था।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो हमारा 6 साल
0: दोबारा इसको जब आपने शुरू किया तो कोई मुश्किल
1: नहीं? असल में हमारी ऑनलाइन क्लासेस,
0: अच्छा,
1: स्टॉप नहीं हुआ।
0: बिल्कुल
1: स्टॉप नहीं हुआ। हमारे एग्जाम डिले हो गए थे क्योंकि बाकी तो जितने भी इदारे हैं या जितनी भी फील्ड्स हैं वहाँ पे उनके ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स से ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया था तो हमें एग्जाम की वेट करने के लिए।
0: अच्छा, स्टडी के दौरान काफ़ी प्रैक्टिकल भी करते हैं, जैसा कि मैंने भी मैट्रिक साइंस के साथ किया है तो हमने भी वो मेंढक का ऑपरेशन किया था, ये ट्रेंड है एक कहा यह जाता है, तो आपने भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ज़ाहिर एक्सपीरियंस।
1: हमारा इस तरह है शेख साहब कि थर्ड ईयर तक तो हम बेसिक्स पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में फिर हमारे वार्ड्स वगैरह शुरू हो जाते हैं जो कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर हम डिफरेंट जो वार्ड्स हैं उनकी रोटेशन हम लेते हैं थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर। तो फिर हाँ, जो फर्स्ट ईयर में हमने हमारी जो एनाटॉमी जो हमने पढ़नी होती है उसमें वो डाइसेक्शन करते हैं, लेकिन अभी वो उन्होंने बंद कर दिए उस चीज़ को, अभी वो जो आर्टिफिशियल मॉडल्स हैं उन पर पढ़ाते हैं।
0: अच्छा
1: जी, तो सर्जरी वार्ड में हमने सीखा है, ऑपरेशन थिएटर जाते थे वहाँ पे सर्जरीज देखते थे।
0: अच्छा, इसमें स्टूडेंट बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि जैसे हम डिफेंस में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, मैं भी जैसे एयरफोर्स में, और उससे पहले वो काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है या सिलेक्शन होती है, या जिस तरह आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं स्टडी के साथ साथ, तो उसमें आपका कोई कुलीग या स्टूडेंट ऐसा कोई जो दिल का थोड़ा सा कमज़ोर हो, जब वो देखते हैं इंसानी अज़ा उसको
1: बहुत सारे सर्जरी
0: करते
1: हैं, बहुत सारे होते हैं,
0: तो वो कैसे कंट्रोल?
1: वो इस तरह होता है शेख साहब कि मेडिकल में बहुत सारे फील्ड्स हैं, स्पेशलिटीज आती है ना, पढ़ाई MBBS तक सारे सेम पढ़ाई करते हैं,
0: ठीक है,
1: लेकिन उसके बाद फिर जो है ना MBBS फाइनल ईयर तक पता चल जाता है हर बंदे को कि मैंने कौन सी फील्ड में जाना।
0: अच्छा,
1: क्यों? क्योंकि अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, अब मैं अपनी बात कर लूँ, अगर मुझे सर्जरी का शौक था तो मैं OT बहुत जाता था, नॉर्मल रूटीन में भी अक्सर जाता था OT, वहाँ पे सर्जरी वगैरह देखता था।
0: अच्छा,
1: अब कुछ लोग हैं जो कि स्टार्ट में उनको सर्जरीज का शौक होता है,
0: अच्छा,
1: वो जाते हैं OT, वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो वो उस चीज़ को नहीं बदलते, तो फिर वो उस चीज़ फिर अपनी फील्ड इस तरह चेंज कर लेते हैं, या मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, पीडियाट्रिक्स की तरफ चले जाते हैं, तो इस तरह मुख्तलिफ
0: तो इसको कैसे वो ओवरकम करते हैं?
1: वो नहीं, वो फिर इस तरह है कि देखें, ऑपरेशन थिएटर आपकी मर्जी है, आप अगर जितना जाना चाहो।
0: अच्छा,
1: फाइनल ईयर तक, ठीक है जी, फाइनल ईयर में आप सिर्फ OT जाके वहाँ पे आपने सर्जरी देखनी है, और वो कंपलसरी नहीं होता।
0: अच्छा
1: जी, MBBS में,
0: ठीक,
1: हाउस जॉब में कंपलसरी होता है,
0: ठीक,
1: MBBS में आप कंपलसरी ये चीज़ आप पे नहीं वो लागू करते कि आपने ज़रूर ऑपरेशन थिएटर जाना है, वहाँ पे आपने वो करना है, वार्ड ज़रूरी होता है, OPD ज़रूरी होती है, और बुक्स जो है ना पढ़नी, और वो सारा कुछ जरूरी है। तो अब जो बंदा वहाँ पे टैकल नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, तो अच्छा, वो फिर इतना नहीं जाते OT, वो OT विजिट नहीं करते।
0: ठीक, अच्छा, मोस्टली लोग क्या प्रेफर करते हैं कि वो फिजिशियन बनना चाहेंगे या सर्जन बनना चाहेंगे? ओवरऑल अगर आप
1: परसेंटेज हवाले से बात की जाए तो फिजिशियन ज़्यादातर लोग उसकी तरफ।
0: अच्छा, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है?
1: ये फिजिशियन की जो ड्यूटी है वो इजी होती है,
0: इजी होती है इस वजह से।
1: जी, इजी इस हवाले से कि मेंटली तौर पे भी वो इजी है, वो इस तरह के सर्जन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जब वो सर्जरी करता है तो वो उस प्रेशर को वो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे एक मरीज का की सर्जरी कर रहा है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है,
0: तो
1: वो जो एक प्रेशर है वो हर बंदा नहीं टैकल कर सकता।
0: तो इसमें कोई माली डिफरेंस भी है फिजिशियन और सर्जन में?
1: माली डिफरेंस है थोड़ा बहुत, कुछ फिजिशियंस ऐसे हैं जो कि सर्जन से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं।
0: अच्छा,
1: लेकिन कुछ लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें, जो अगर आप बात करना चाहें उसमें पैसों में, तो वो सर्जन ज़्यादा कमा,
0: सर्जन ज़्यादा, क्योंकि ये मैंने भी ज़ाहिर देखा है पाकिस्तान में रह कर भी, और अभी भी देखते हैं कि सर्जन जो होता है वो उसकी ज़्यादा वैल्यू ज़ाहिर है, ज़्यादा भी हमारा, मेरा एक क्लास फेलो है, तो वो नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत ज़्यादा सर्जरी करता है, और दिन में वो हो सकता है 10-10 सर्जरी करता हो, लेकिन वो कहता है मैं इश्क करता हूँ, यानी मुझे सही पैशन है इस प्रोफेशन का, और वो करता है। चलें आगे बढ़ते हैं, ज़रा डॉक्टर आप बन गए। अच्छा, इस वक्त आपकी मतलब है, जैसा आपने बताया भी कि आप सर्जरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या सर्जन बनना चाहते हैं मुस्तकबिल में। अच्छा, उसके बाद तालीम जब आपने मुकम्मल की, तो उसके बाद ज़ाहिर ज़हन में आता है कि अभी जॉब का सोचें कि कहाँ करनी चाहिए, तो इस हवाले से अगर बताएं कि सबसे पहले आपकी जॉब या घर वालों का क्या मतलब है था एक ज़हन या माहौल जब आप डॉक्टर बन के घर गए, तो एक तो उनकी ख्वाहिश पूरी और दूसरा उनका क्या मतलब है रिएक्शन था?
1: जी, ये जब मेरी MBBS कंप्लीट हमारा हो जाता है, तो उसके बाद होती है हाउस जॉब, वो एक साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें आप जो है ना ये बेसिक डिजीजेज और ये सारी चीज़ें आप उनका एक एक पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन आप सीखते हो, और पेशेंट को डील करने का तरीका, काउंसल करने का तरीका, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। उसके बाद जी फिर मैंने, मेरी जब हाउस जॉब कम्प्लीट होने वाली थी, आखिरी वीक दो वीक तकरीबन रहते थे, तो मैंने अपने लिए जॉब सर्च कर ली थी।
0: ठीक है,
1: जैसे ही मेरी अब जॉब ख़त्म हुई है, तो उसके बाद फिर मुझे मौका मिला एज़ अ मेडिकल ऑफिसर काम करने का,
0: ठीक है,
1: नॉर्वेजियन रेड क्रॉस में। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी एफिलिएटेड विद नॉर्वेजियन रेड क्रॉस।
0: अच्छा अच्छा जी, तो ये कहाँ थी?
1: ये मेरी जो ड्यूटी ऑफ स्टेशन था वो वज़ीरिस्तान था।
0: अच्छा, वज़ीरिस्तान ये बड़ा हसास हार्ड एरिया,
1: काफ़ी हसास और काफ़ी हार्ड एरिया था। मुझे फैमिली की तरफ से प्रेशर आया कि आपने आप उधर ना जाओ।
0: अच्छा,
1: मतलब जो भी होता है, लेकिन वही बात है कि शेख साहब मेहनत ज़रूरी है अपने फील्ड में, और अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो आगे ग्रोथ नहीं होगी। तो फिर मैं
0: इलाका जो आपने ये सिलेक्ट हुआ या आपकी जॉब जहाँ हुई, तो वो आपके जहन में नहीं आया जैसा आपके वालिद ने कहा?
1: आया, जरूर जरूर
0: कि वहाँ जिस तरह की सूरत हाल है।
1: आया, मेरे जहन में आया, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ अगर एक इंसान के पास ना हो एक जगह पे और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती
0: मिल
1: है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगी।
0: अच्छा।
1: और मैंने रिस्क लेके मैंने वहाँ पे जॉब की और काफ़ी कुछ सीखा मैंने वहाँ।
0: अच्छा, कितना अर्सा?
1: मैं तकरीबन एक साल वहाँ पे मैंने जॉब की है।
0: तो इस दौरान जैसे वो एफिलिएटेड थी नॉर्वेजियन के साथ, तो क्या वहाँ कोई था इनके नॉर्वे के कोई?
1: बेसिकली ये एक नॉर्वे फंडेड प्रोग्राम था।
0: अच्छा।
1: और वहाँ पे हम जो वहाँ के इलाके के लोग हैं उनके लिए फ्री मेडिकल कैंप्स करते थे।
0: अच्छा।
1: उनको फ्री दवाइयाँ प्रोवाइड करते थे।
0: या नॉर्मल ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात वो विजिट करने के लिए भी चले जाते थे नॉर्वे के?
1: नॉर्वेजियन जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो एम्बेसडर्स थे वो अक्सर आते थे।
0: अच्छा,
1: वो एक दो दफ़ा आए, ज़्यादा नहीं आए। और बाकी वहाँ के लोगों को हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, इमरजेंसी कंडीशंस में उनको फर्स्ट एड दिए हैं।
0: अच्छा,
1: उनको काफी हमने वहां पे।
0: अच्छा, इमरजेंसी की आप बात कर रहे हैं, तो इमरजेंसी किस किस्म की? क्या वो कोई एक्सीडेंट जैसे दहशतगर्दी के हवाले से?
1: उस हवाले से हमारे पास कोई केस नहीं आया।
0: कोई ऐसा नहीं
1: मेरे पास उस तरह, मेरे टेन्योर में उस तरह का कोई केस नहीं आया मेरे पास फायरआर्म इंजरी का। एक्सीडेंट के काफी आए हैं, या कोई गिर जाता है वहाँ पे, तो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, तो इस तरह के इलाके हैं कि पथरीला इलाका है।
0: कोई ऐसा सानिया या कोई वाकया आपके टेनोर के दौरान पेश नहीं आया, जैसे वहाँ जिस तरह के हालात हैं उस इलाके में, कि कोई ऐसा वाकया हुआ हो? तो फिर या आप जहाँ ये थी ये नॉर्वेजियन तंजीम या हेडक्वार्टर, वहाँ कोई ऐसा रिस्क या कोई ख़तरा कोई ऐसा?
1: एक दफ़ा हुआ था, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हाँ जी, उसमें हाँ वो एक केस हुआ था, एक धमाका हुआ था जी।
0: अच्छा
1: जी, तो हमारे बड़ा करीब हुआ था और वो काफ़ी सीरियस सिचुएशन बन गई थी।
0: अच्छा अच्छा।
1: उसके तकरीबन फिर मैंने एक दो तीन महीने बाद फिर मेरा डेनमार्क का मैंने अप्लाई किया था, तो वो फिर आगे मैं
0: चले
1: उस तरफ।
0: अच्छा,
1: आगे
0: तो कैसे आपने फिर, आपके जहन में ये कैसे ख्याल आया कि मैं डेनमार्क ही जाना चाहता हूँ? या बाज़ दफ़ा होता है ना कि बंदा अप्लाई करता है मुख्तलिफ जगहों पर, तो उसमें फिर सिलेक्शन आपकी हो जाती है, या आपका दाना पानी यहाँ डेनमार्क में शुरू हुआ?
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये किस्मत की बात भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में जब एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई से फारिग होता है, आजकल के जो दौर है, पहले तो ऐसे नहीं था, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आजकल।
0: अच्छा।
1: के जो यंग डॉक्टर्स हैं।
0: अच्छा।
1: हर बंदा यही चाह रहा है कि वो अपने करियर को परस्यू करे, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाके।
0: अच्छा।
1: उसका रीज़न ये है कि जब एक इंसान अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है, वो इतने मुश्किल मरहलों से गुजर के वो इस तरह का कैरियर उसने चूज़ किया है, और वो पढ़ाई करके अपनी यूनिवर्सिटी जब वो डिग्री ले लेता है, तो उसके जो रिलेटेड जो उसके साथ लोग होते हैं या उसके जो अपने, वो काफ़ी उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बहुत हाई होती हैं। क्योंकि एक डॉक्टर, अगर आप नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में या लेमैन बंदे को आप बताओ डॉक्टर, उसके जहन में आता है डॉक्टर पैसा या बहुत, मतलब एक किस्म का एक लग्जूरियस लाइफ। वो चीज़ जो हम डिज़र्व करते हैं जो हमारे नए यंग डॉक्टर्स हैं, वो उनको पाकिस्तान में नहीं मिल रही।
0: ठीक है।
1: तो मैं जब मेरा हाउस जॉब हुई, हाउस जॉब में मैंने जब हॉस्पिटल्स के वो हालात देखे और जो कंडीशंस देखी जिस तरीके से चल रहा है सिनेरियो, तो मैंने फिर ये इरादा किया कि मैंने अब निकलना है पाकिस्तान से।
0: अच्छा।
1: तो फिर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ कंट्रीज़ का, तो वहाँ पे हमें फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली डेनमार्क की, कि वो उन्होंने एक वीज़ा प्रोसेस शुरू किया था, ऑथराइजेशन वीज़ा फॉर डॉक्टर्स, जिसमें हम यहाँ पे आके हमने इनकी लैंग्वेज सीखनी है, और उसके बाद फिर इनके सिस्टम में हमने एंट्री करनी है एज अ डॉक्टर। तो
0: अच्छा उस थोड़ा सा इस पे भी चले बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूँगा कि ये क्यों इस तरह का ट्रेंड या रुझान बन चुका है कि जब डॉक्टर एक बन जाता है किसी भी फैमिली में, चाहे उसके बड़े भी हों या वो जब नया बनता है, तो उसके जहन में फिर ये सवाल क्यों पैदा होता है कि मैं पाकिस्तान में अपनी खिदमात को पेश नहीं करना चाहता। वहाँ के सिस्टम की वजह से या माली कह लें कि खुशहाली की वजह से ये करते हैं, आपके जहन में ये क्या है?
1: शेख साहब ये इसमें जो है ना, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया कि ये जो है ना, जब एक इंसान डॉक्टर बन जाता है तो उसको जो वो जो उसकी वर्थ है वो पाकिस्तान उसको नहीं देता आजकल के दौर में। उसका रीज़न, उसका जो वो है वो माली हालात से भी है और रिस्पेक्ट के हालात से भी है। आजकल जो सरकारी अस्पतालों के हालात हैं कि कोई भी आके डॉक्टर पे हमले करके चले जाते हैं, कोई मतलब उधर सिक्योरिटी नहीं है उनके लिए, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इन चीज़ों का। तो एक तो माली हालात हैं कि वहाँ पे तनख्वाहें बहुत ज़्यादा कम हैं, एक डॉक्टर की जो तनख्वाह होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप सर्वे करें पूरी दुनिया में तो जहाँ पे भी आप डॉक्टर्स की पेमेंट को, पे को आप देखेंगे या उनके जो जो फैसिलिटीज़ हैं उनको आप देखेंगे तो, और पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जी। अच्छा, और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है।
0: नहीं, इसमें जब डॉक्टर एक बन रहा होता है तो उसको अंदाज़ा तो हो जाता है कि मैं जिस मुल्क में ये स्टडी कर रहा हूँ कंप्लीट, तो स्टडी की मुकम्मल होने के बाद इसका रिस्पांस मुझे किस तरह का मिलेगा, ये तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास जितने उनके रिसोर्सेज होंगे उसके मुताबिक वो किसी भी डॉक्टर को या नए डॉक्टर्स को वो मैनेज करेंगे। और जैसा आपने कहा कि डॉक्टर ज़ाहिर है जब बनता है तो वो उसके दिल में होता है कि मैं अपनी वर्थ को जो है ना इस्तेमाल करूँ या इसको वसी करूँ, तो उसके लिए वो कोशिश करता है चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर। तो ये तो डॉक्टर को पता होता है, लेकिन चले मैं थोड़ा सा और अगर डीप जाएं तो इस वक्त जो पाकिस्तान में ट्रेंड है, जो मैंने महसूस किया है जब पाकिस्तान में मैं जाता हूँ या इस वक्त भी जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर भी हैं, जिस जितने भी, उन्होंने अभी एक ट्रेंड बना लिया हुआ है कि 8-10 डॉक्टर इकट्ठे होते हैं, एक यानी एफिलिएशन होती है उनकी, और वहाँ वो एक बिल्डिंग को हायर करते हैं, वहाँ वो किसी भी नाम से वो इदारा बना लेते हैं, चाहे डॉक्टर्स हॉस्पिटल हो चाहे किसी भी नाम पे, तो उसमें फिर वो मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टर वो इकट्ठे होकर अपनी खिदमात को पेश करते हैं आवाम के सामने। लेकिन इसके पसे पर्दा जो हमारी पाकिस्तानी आवाम की अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। मिसाल के तौर पर कोई तबका ऐसा जो अफोर्ड नहीं कर सकता किसी बीमारी अगर उसको होती है तो, लेकिन उसका इलाज वो प्राइवेट बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और सरकारी अस्पताल में जैसा आपने खुद भी बताया कि उस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते या वो सही तरीके से वो मैनेज नहीं कर सकते पेशेंट को। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? आपने तो चले ठीक है सिलेक्शन कर ली कि मैं बाहर जाऊंगा और इधर आके जो करूंगा, लेकिन इसके हवाले से थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें।
1: ये शेख साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो बाहर आने का, डॉक्टरों के बाहर आने का जो ट्रेंड है ये तकरीबन 4-5-6 सालों से शुरू हुआ है।
0: अच्छा
1: जी, ज़्यादा जो रुझान बाहर का हुआ है, पहले डॉक्टर्स जो थे वो कोई भी, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी अपने अगर अपने मुल्क में स्टेबल है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो दूसरे मुल्क में जा के रहे और वहाँ पे उनकी ज़बान सीखे और अपना आप उनके सिस्टम में इंटर करे। सबसे पहले तो मैं, अगर मुझे पाकिस्तान में जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की है, मेहनत की और जिस तरीके से हमने वो किया है, उस तरीके से अगर हमें वो लोग फैसिलिटेट करते तो मैं कभी भी बाहर ना आता, पहली बात। दूसरी बात आपने की है कि डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक्स खोल लेते हैं। बेसिकली जो पाकिस्तान में एक डॉक्टर की तनख्वाह होती है वो इतनी नहीं होती कि वो अपने उस तरीके से जो उसके ख़र्चे हैं, जिस तरीके से उसने लाइफ गुजारनी है वो पूरा हो सके। और दूसरी बात, पाकिस्तान ये हर जगह पे है कि आप एक डॉक्टर बन गए हैं, रजिस्टर्ड आरएमपी हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, तो आप क्लिनिक खोल सकते हैं और ये एक किस्म का उनका राइट है कि वो क्लिनिक खोलते हैं और उसमें जो है ना, हाँ मैं एक बात करूँगा, फ़ीस जो कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि बहुत हाई फीस रखते हैं,
0: ठीक है,
1: बहुत ज़्यादा हाई फीस होती है उनकी जो कि इफ़ेक्ट करता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो इलाज जो प्राइवेट आपको इलाज मिल रहा है उसमें और जो सरकारी हॉस्पिटल में आपको इलाज मिल रहा है उसमें बहुत फ़र्क है। प्राइवेट में अगर आपका पैसा लग रहा है लेकिन आपको उस हिसाब से उस तरीके का इलाज भी मिल रहा है। सरकारी अस्पताल में अब मैं अपनी बात करूं, हमारा जो DHQ को हार्ट है उसमें सीटी स्कैन की मशीन नहीं थी।
0: अच्छा,
1: डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर सीटी स्कैन आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा और प्रॉपर जो है ना आपको वहाँ पे जो जो एक ज़रूरी चीज़ें हैं, जो एक ज़रूरी वो हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हॉस्पिटल में, तो जाहिर सी बात है फिर आपने प्राइवेट जाना है। ठीक है, और फिर प्राइवेट में आपको वो चीज़ें मिल रही हैं तो ये तो
0: जी, हाँ,
1: तो वो फिर उसमें प्राइवेट, जाहिर सी बात है प्राइवेट में फिर इंसान जो है ना वो फीस भी लेता है वहाँ पे इलाज करने का। लेकिन कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स हैं जो वही बात है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, तो है इस तरह के डॉक्टर्स।
0: अच्छा,
1: भी हैं।
0: एक ट्रेंड ये भी अभी भी शायद चला हुआ है, या मुझे तो अपने इलाके का पता, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, कि कोई भी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ का जो MS या कुछ सीनियर डॉक्टर्स है उसने एग्रीमेंट किया होता है कि उस इलाके की जितनी भी मेडिकल स्टोर है उसके साथ एग्रीमेंट ये होता है कि हमारी रसीद रिसेप्ट आएगी मेडिसिन की, आपने ये मेडिसिन देनी है और उस मेडिसिन से जो भी इनकम होगी उसमें उनका वो कमीशन होगा। आप इसको, आपके साथ इसका कोई इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है या सुनाया गया है? क्योंकि मुझे ये पता है, एज ए कह लें कि एक छोटा सा साफ़ी होने के मुझे इस चीज़ का पता है।
1: असल में शेख साहब, हर MS और हर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं या कंसल्टेंट हैं वो ये सब नहीं करते।
0: जी जी,
1: मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग हैं जो कि कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं और उसकी वजह से हर डॉक्टर बदनाम हो जाता है कि यार ये डॉक्टर तो इस तरह का। ये ट्रेंड है पाकिस्तान में कि मुख्तलिफ लैब्स के साथ उन्होंने कोलाबरेट किया हुआ होता है और मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स के साथ, कंपनीज़ के साथ, जो कि उनको फिर गिफ्ट प्राइजेस देते हैं। लेकिन हर डॉक्टर इस तरह नहीं है, हर फील्ड में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, तो इससे आवाम इफेक्ट होती है और ये नहीं करना चाहिए।
0: और दूसरा ट्रेंड ये भी है कि शहर के अलावा जितने हमारे कोई छोटे मोटे देहात हैं, गांव हैं, वहाँ एक डिस्पेंसर या एक मतलब है कह लें कि अताई डॉक्टर जिसको कह सकते हैं, वो वहाँ उस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो एक नॉर्मल डॉक्टर करता है, यानी इंजेक्शन भी लगा रहे हैं और ऐसी ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जिससे काफ़ी।
1: मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब ये जो हमारे DHQ हॉस्पिटल में जो कि कंसल्टेंट्स होते हैं और उनके बाहर जो अटेंडेंट्स बैठे होते हैं, जो नंबर वगैरह लेते हैं, वो बंदा अपने इलाके में डॉक्टर होता है।
0: अच्छा।
1: हमारे पाकिस्तान का ये ट्रेंड है, वो बंदा अपने इलाके में जाके लोगों का इलाज करता है, उनको क्यों, उसने सिर्फ सीखा है। और ये हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान हेल्थ सिस्टम की सबसे बड़ा फेलियर है।
0: अच्छा।
1: कि वो इस चीज़ को नहीं बंद कर पा रहे।
0: अच्छा।
1: इन लोगों की वजह से बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, हमारे लोगों को तो नहीं आइडिया होता हाथों में।
0: इसके अगर मुआवजा करें यहाँ का, तो यहाँ डॉक्टर एक जो है ना वेरी रेयर वो
1: बहुत
0: इंजेक्शन लगाता है, नॉर्मल वो मेडिसिन से ही कहता है जी।
1: ये ट्रेंड असल में इन्हीं अताई डॉक्टर्स ने शुरू किया है। जो हमारे MBBS डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत रेयरली इंजेक्शन लिखते हैं, इतने ज़्यादा वो इंजेक्टेबल्स पे नहीं वो करते। लेकिन हमारे जो, क्योंकि आप मुझे बताएं, एक देहात में एक अताई डॉक्टर ने क्लिनिक खोला हुआ है, वहाँ पे उसके पास आपका किसी मरीज का जो है ना, या किसी इंसान का जो बच्चा है वो बीमार हो गया, उसके पास वो ले जाते हैं, वो इंजेक्शन पे उसको आदि कर देता है। वो बच्चा जब थोड़ा सा, वो उसकी एज ज़्यादा होती है, वो जब अगर उसको कोई मसला होता है तो उस पर फिर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, क्योंकि वो रेजिस्ट हो चुका होता है। उसको अताई डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा लगा के उसकी इम्यूनिटी का बेड़ा गर्क कर दिए। तो वो ये चीज़ जो है ना, ये स्टॉप होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अगर ये स्टॉप हो गई तो हमारे डॉक्टर्स अगर सरकारी जॉब नहीं भी करते, अगर उनको सरकारी जॉब अगर नहीं भी मिल रही, गवर्नमेंट उनको अकोमोडेट नहीं कर सकती, तो वो कम से कम अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के वो अपनी कैरियर को परस्यू कर सकते हैं और लोगों को अच्छी खिदमत दे सकते हैं बजाय इन अताई डॉक्टर्स की।
0: अच्छा।
1: तो ये ट्रेंड, अब मैं आपको बताऊं कि हमारे जो कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे एक MBBS डॉक्टर बैठा हुआ है और एक अटाई डॉक्टर के ज़्यादा मरीज़ हैं। इसमें हमारी आवाम की भी गलती है और हमारी गवर्नमेंट की भी
0: गलती नहीं। तो इस तरह की अगर सूरत आ रही है तो हुकूमत वक्त ये एक्शन नहीं ले सकती?
1: हुकूमत वक्त एक्शन ले लेती है, फिर पैसे उनको, बस वही बात है,
0: खुल जाता है। ठीक है। अच्छा, MBBS की डिग्री, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो MBBS की जो डिग्री है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में, वो अगर उसको मैं कंपेयर करना चाहूँ यहाँ डेनमार्क में या पूरी दुनिया में, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
1: मैं आपको ये पाकिस्तान की जो ये एक चीज़ है कि वहाँ पे जो हमारी पढ़ाई है MBBS की या जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है।
0: अच्छा,
1: पाकिस्तानी अगर एक ट्रेंड डॉक्टर अगर बाहर आता है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होके आता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और फिर भी आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो वो उस हवाले से उनकी ट्रेनिंग और उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और वो काफ़ी मतलब उनकी वसी उनका
0: ये तो आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये डिग्री के लिहाज से इसका इनका स्टैंडर्ड जो है बाकी ममालक से, यूरोपियन ममालक से या पूरी दुनिया से कैसे मुआवजा किया जाता है?
1: मैं वही बात कि पाकिस्तान में जो डिग्री का हो रही है वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनका अच्छा। रीज़न यह है उनकी डिग्री की वैल्यू, तो वो तो पाकिस्तान की वैल्यू की वजह से जो है ना,
0: अच्छा।
1: आपको पता है कि वो
0: इस तरह से
1: एफिलिएट नहीं है,
0: ठीक है।
1: अगर बात की जाए वहाँ के डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी की तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो कॉम्पिटेंट
0: डॉक्टर है,
1: लेकिन वो वही बात है कि पाकिस्तान की अगर वो नहीं है इतना एफिलिएशन इतनी नहीं है तो वो उनको इतना फिर वो बाहर ममालिक में वो उनको टेस्ट देने पड़ते हैं और वो सारा कुछ करना,
0: ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि बाकी दुनिया के डॉक्टर्स जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को फ्रेश करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में?
1: ये ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन है
0: पाकिस्तान से तो जाते
1: पाकिस्तान
0: है,
1: से तो जाहिर सी बात है वो तो जाते हैं और वो आजकल तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का ट्रेंड हुआ हुआ है, लेकिन आए हैं बाहर ममालिक से भी काफ़ी डॉक्टर्स आए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उन्होंने काम किया, शिफा हॉस्पिटल में काम किया उन्होंने, पिम्स में काम किए।
0: चले, डेनमार्क आप आ गए और आपका जनाब यहाँ अराइवल हो गई, और सबसे पहले तो ये बताएं कि डेनमार्क कैसा आपको लगा, कोपेनहेगन डेनमार्क?
1: डेनमार्क बहुत कलरफुल है, बहुत प्यारा कंट्री है।
0: किस हवाले से आप कहना चाहेंगे, लोगों के रवैये से, यहाँ के सिस्टम के हवाले से, मेडिकल का तो बाद में फिर पूछते हैं।
1: यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत फ्रेंडली लोग हैं,
0: अपनी कम्युनिटी का बताएं और यहाँ डेनिश जो कम्युनिटी उसका।
1: अपनी कम्युनिटी से तो मेरा मतलब ज़्यादातर लोगों से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ।
0: अच्छा।
1: आपसे इंटरेक्शन हुआ और आपसे बड़ी अच्छी गपशप लगी है, और आप
0: टाइम थोड़ा है ना आपको,
1: और बाकी जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे माहौल तो काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं और काफ़ी मतलब रूल्स पे चलने वाले लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं,
0: ठीक है,
1: और इसी तरह कौमें तरक्की करती हैं, तो किसी के साथ ज्यादती, किसी का नुकसान करना, किसी का हक मारना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने नोट किया नहीं।
0: यहाँ पाकिस्तानी त्यौहार जो होते हैं 25 दिसंबर इकबाल डे, 14 अगस्त, 23 मार्च या इस तरह के बाकी इवेंट्स, फैमिली इवेंट्स यहाँ काफ़ी होते हैं, और आपका कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ या अभी तक नहीं?
1: अभी तक नहीं हुआ जी।
0: अच्छा,
1: अभी तक मेरा कहीं जाने का वो
0: चले इंशाल्लाह ताला, अभी आप तो इधर ही है ना, तो आपको दिखाएंगे भी। अब यहाँ अम्बेसी, पाकिस्तान अम्बेसी में हमारे इवेंट्स होते हैं, ये अच्छा। अभी हुआ है रिसेंटली 14 अगस्त, बड़ा अच्छा, और उससे पहले 14 अगस्त बाकी तंजीमात यहाँ जो हैं उन्होंने भी सेलिब्रेट किया मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन उसके साथ साथ ये जब समर शुरू होता है ना यहाँ, यहाँ एक ट्रेंड एक चल निकला है कि यहाँ समर फेस्ट के नाम से या मैंगो फेस्ट के प्रोग्राम के हवाले से यहाँ मुख्तलिफ तंजीमात ये अरेंज करती हैं, उसमें पाकिस्तान से ये जो हमारी सौगात है आम या बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें खाना भी होता है, कपड़े वगैरह या बाकी जो हमारा कल्चर है उसको भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में इस तरह के ये इवेंट्स में आप ज़रूर शिरकत करेंगे ताकि आपको पता चले। अच्छा, दूसरा अभी मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ आपका दाखिला हुआ या इंटरव्यू मेडिकल के हवाले से, तो सबसे पहला दिन कैसा आपका रहा जब आप यहाँ आए?
1: यहाँ पे जाहिर सी बात है पहले जब आया था तो पहला दिन तो काफ़ी ऐसे थकान थी, थके हुए थे काफ़ी, और मौसम अच्छा था क्योंकि हम बिल्कुल जो टफ गर्मी थी उसमें आए थे, तो पाकिस्तान में काफ़ी गर्मी थी लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, तो फिर उसके बाद घर वगैरह हमने किया, उसकी रहने की बंदोबस्त किया उसके बाद जब हमारी सेटिंग हो गई एक महीना डेढ़ महीने में, तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजर रहा है अभी भी. मेडिकल जो इनके लैंग्वेज जो स्कूल्स हैं उनको है। असल में इनके लेवल्स होते हैं PD1 PD2 PD3 लेवल्स होते हैं, तो उसमें मैंने PD3 लेवल हमारा जो हमें दरकार होता है मेडिकल सिस्टम में एंट्री के लिए PD3 लेवल दरकार होता है, तो मैं उसके कोर्स में मैंने एंट्री ली और मैं अभी उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ. इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करके वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर.
0: अच्छा, तो किसी मेडिकल के प्रोफेशन में या मेडिकल के लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ है?
1: जी मेडिकल के लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, डॉक्टर से इंटरेक्शन हुआ है. असल में हमारा जो ये स्कूल है तो ये फिर हमारे तीसरे मॉड्यूल के बाद ये फिर आपको हॉस्पिटल के टूर्स वगैरह और वहाँ पे आपको फिर वो इंटरेक्शन उनके साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ सिखाते हैं.
0: तो कैसे आप डिफरेंट करते हैं पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम से और यहाँ के सिस्टम से, यहाँ कैसा है और वहाँ?
1: अगर देखा जाए रिसोर्सेज के हवाले से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके पास रिसोर्सेज हैं और इनकी फैसिलिटीज़ और पेशेंट को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं लोग और बहुत मतलब उनको.
0: और सर्विस के लिहाज से कैसे है ये?
1: सर्विस के लिहाज से इस तरह है कि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो आपको जो ये जो इलाज है वो आपको बहुत ईजीली अवेलेबल है, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं. आप एक कंसल्टेंट के साथ आप अगर वहाँ पे जाके आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आपका डाउट क्लियर हो जाता है, आपके टेस्ट हो जाते हैं जो आपने करवाने हैं, सारा कुछ बहुत ईजीली होता है.
0: अच्छा,
1: यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको कंसल्टेंट से मिलने के लिए महीनों लग जाते हैं.
0: यानी वेटिंग लिस्ट
1: बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे आपकी मर्जी के मुताबिक आपको टेस्ट नहीं करने देते, और आपको अगर इमरजेंसी कंडीशन आपकी नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, और ये चीज़ थोड़ी सी
0: ठीक है
1: होती है.
0: अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर आप ये सारा सिस्टम अगर आप कंप्लीट करते हैं लैंग्वेज का भी और बाकी जो हैं चीज़ें, तो फिर आप खुशी महसूस करते हैं कि यहाँ आप रह के अपनी खिदमात को पेश करें?
1: जी जाहिर सी बात है, इंशाल्लाह इधर आए हैं मेहनत कर रहे हैं तो फिर इधर एंट्री हमें मिल जाए और यहाँ पे हम एज अ डॉक्टर काम करें तो बहुत अच्छी बात
0: होगी. यहाँ भी हमारे माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी में काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो अपनी खिदमात को पेश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपने ये डेनमार्क को चूज़ किया ये अच्छा किया है, क्योंकि मैं भी अभी 25-26 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मुझे पता है यहाँ का सिस्टम किस तरह का है अगर हम कंपेयर करें बाकी यूरोपियन ममालिक के साथ. तो मज़े नाज़रीन बातें हो रही हैं काफ़ी, और मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही होगी और इसका फीडबैक भी देंगे. और रज़ा मुस्तफ़ा साहब, मैं चाहूँगा कि वो अपने मोबाइल को एक साइड पर रख के हमारे प्रोग्राम में ज़रा शामिल हो, और मैंने तो जितनी बातें मेरे जहन में या दिल में थी वो मैंने कर दी. मैं चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से डॉक्टर सलमान से कुछ बात करें.
2: बहुत शुक्रिया जफर भाई. अभी हाल में ये पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि पाकिस्तान एक हॉस्पिटल में आग लगी.
0: जी,
2: दिल को दहला देने वाली जो है वो खबरें आ रही हैं वहां से, लेकिन हकीकत अभी भी किसी को, कोई कहता है कि जी 14 बच्चे थे वहां पे, कोई कहते हैं 50 थे, मुख्तलिफ खबरें हैं. तो वहां पे इंसानियत जो है ना, इंसानियत अगर हम कहते हैं ना कि मुल्क ने तरक्की कर ली, तो ये नहीं होता कि सड़कें बन गई, पुल बन गए, वो फास्ट ट्रेनें चल गई, सड़कें साफ हैं, ये है वो है. जफर भाई, मेरे हिसाब से अगर आप देखते हैं ना, तो वहाँ पे जब एक मुल्क तरक्की करता है ना, तो लोगों का जो इंसानी शऊर, इंसानियत, इंसानी हकूक जो है, तो आप देख लें वहां पे जब आग लगी, तो खैर एक वीडियो मैंने देखी जहां पे एक नर्स एक बच्चे को लेके वहां से बचाने में कामयाब हो गई, लेकिन जो वहां पे जाने बचाने वाले भी हैं, जिस तरह भी डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वो बखूबी जानते हैं कि किस तरह वहां पे रिश्वतें ली जाती हैं, किस तरह वहां पे जो है वो काम किए जाते हैं, लोगों को जो है वो किस तरह जो है वो जलील ख्वार. अगर आप किसी महकमे को भी पाकिस्तान ले लेना, कहते हैं ना कि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की बुराई ना करें, आप इस तरह की बातें करते हैं तो वो कहते हैं ना कि अपने पेट से पर्दा उठाएं तो वो अपना ही पेट नंगा होता है. लेकिन جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے تب تک شاید ہمیں شرم بھی نہیں آئے گی. تو ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں یہ جو انسانیت کے نام پہ ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے مسلمان ہیں, اسلام کے نام پہ یہ ملک بنایا گیا تھا, بڑی ہمارے بزرگوں نے جو ہے, ہماری ماؤں نے اپنی جانیں عزتیں دے کے جو ہے یہ ملک بنایا تھا, تو کیا واقعی وہ ملک ہے جو جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں, بنایا تھا, اور جو خاص طور پہ پمس ہاسپٹل میں جو وہاں پہ 14 بچے جلس کے مر گئے, اور جس طرح ہمارے وہ منسٹر صاحب ہیں جو اکڑ اکڑ کے باتیں کرتے ہیں, ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ مر گئے ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ اکڑ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
1: بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ پمز میں, اور میں جہاں تک میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے, کوئی مطلب آپ اگر ادھر ہاسپٹلس کی جو سرکاری ہاسپٹلس کی میں بات کر رہا ہوں, حالانکہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں وہ بڑے زبردست انہوں نے ان کو بنایا ہوا ہے, لیکن سرکاری اسپتالوں کی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں پہ آپ علاج کروانے جا سکیں, وہاں پہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. حالانکہ پیمز بہت بڑا ہاسپٹل ہے وہ ہمارے اسلام آباد میں, اور کافی وہاں پہ لوگوں کا علاج ہوتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ کچھ حادثے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن حادثے آپ نے چیک اینڈ بیلنس تو رکھنا ہے ان چیزوں کا, جہاں تک بات ہے وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ان چیزوں کی, کیونکہ یہ جو نرسری ہوتی ہے یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ایریا ہوتا ہے, یہاں پہ ان بچوں کو رکھا جاتا ہے جو کہ پری میچیور برتھ لیتے ہیں, تو ان کے لیے ادھر کا انوائرمنٹ, وہاں کی جو ٹیمپریچر ہے, وہاں کا جو سسٹم ہے, ان کو بہت زیادہ وہ ایک طریقے سے اس طریقے سے رکھنا ہوتا ہے کہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو, یا وہ اس انوائرمنٹ میں وہ دن گزار سکے, اس کے بعد پھر وہ میچیور ہوتا ہے. تو ایسے سینسیٹیو ایریا میں اور ایسے سینسیٹیو ڈپارٹمنٹ میں اگر آگ لگتی ہے تو یہ فیلیور ہے ہمارے
2: سسٹم کا. لیکن وہاں پہ تو اگر آپ جب بھی کوئی کسی کا بھی بیان سنتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, یہ میرے انڈر نہیں آتا. آپ ایک منسٹر ہیں, ٹھیک ہے کہ آپ منسٹر ہیں, آپ وہاں پہ ڈائریکٹر نہیں لگے ہوئے, آپ وہاں پہ نرس نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, لیکن ایک پورا نظام تو آپ کے نیچے ہے نا. چلیں اسی طرح کر لیتے ہیں کہ اگر ان 14 بچوں نے جو نمبر ابھی ہمیں دے رہے ہیں, اگر ہم انہی کو اس یہ سمجھ کے کہ ہم نے ان کی قربانی دے دی اور آئندہ جو ہے اس طرح کے حادثے نہیں ہوں گے. ہم نے کراچی میں فیکٹریوں میں آگ لگی دیکھی, وہاں پہ لوگ کس طرح جلس کے مر گئے, ہم نے شاپنگ مال دیکھے ہیں وہاں پہ جہاں آگ لگی, تو ہم کب سیکھیں گے یہ اپنے اس نظام سے, اپنی ان غلطیوں سے, اپنی ان کوتاہیوں سے, کہ آئندہ ہم نے ان لوگوں کی جو ہے وہ جانے نہیں ضائع ہونے دینی. کیونکہ میں نے شروع میں کہا نا کہ انسانیت تو میرے خیال میں شاید بہت کم جو ہے وہ پاکستان میں رہ گئی ہے.
1: جی جی, یہ دیکھیں ذمہ داری, ایک چیز کی ذمہ داری لینا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. ہمارے منسٹرز ووٹ لے کے آ جاتے ہیں اور صرف ان کو جو چاہیے پروٹوکول اور وہ چیزیں وہ انجوائے کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے ذمہ داری نہیں

0: पैसे नहीं है अफोर्ड करने के कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट सीटी स्कैन करवा सके। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने उसके लिए सीटी स्कैन लिखा है, अब मेरे हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन नहीं है, इसकी में किसकी गलती है? ये डॉक्टर की गलती है, ये हेल्थ मिनिस्टर की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है? लेकिन सारा मलबा किस पे आता है? डॉक्टर पे। ठीक है जी, कि डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं चलाता, डॉक्टर सिर्फ हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करता है, हॉस्पिटल चलाने का काम हुकूमत का है और हेल्थ मिनिस्टर और MS उन चीजों का होता है। तो इंतजामिया जिम्मेदारी नहीं लेती और ये सबसे बड़ा एक नाकामी है हमारे माशरे के लिए।
1: नहीं, अभी आपने रजा साहब ये फरमाया कि हेल्थ मिनिस्टर है सैयद कमाल मुस्तफा कमाल, ये देखें इसका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड कहा जाता है कि बड़ा अच्छा था, जब मेयर था कराची का, बड़े अच्छे काम किए उस दौर में इसने, लेकिन उसको उसने मट्टी में डाल दिया सारा एक साइड पर रख के ना, जिस तरह उसने बयान दिए और एक खातून उसके साथ गुफ्तगू कर रही है और उसके साथ इस तरह वो इस लहजे में बात कर रहा है, बल्कि उसके साथ जो उसका वो पिट्ठू था वो उसको बड़े मतलब सख्त अल्फाज में मना कर रहा है, चुप करो, जुबान बंद करो, और ये वो यहाँ तक कह रहा है कि ये तुम्हारे बाप के लिए 20,000 रोज़ाना का ये खर्चा है और ये तुम्हारे बाप के लिए कर रहे हैं, तो क्या वो अपने
2: ज़ाती तौर पर कर रहे हैं? इरफान गिलानी साहब आए हुए थे जो ब्रॉनबी में,
1: देखा मैंने प्रोग्राम,
2: तो उनसे मैंने यही सवाल किया कि जब सियासतदान जो हमारे टैक्स पेयर से हमारी तनख्वाह, हम उनको तनख्वाह देते हैं, वो हमारे मुलाजम है बेसिकली, हम उनको, इनको तो खैर हमने इलेक्ट भी नहीं किया, इनको तो किसी और ने सिलेक्ट करके ले आए हैं, और एक वो जनाब कमाल साहब को तो एक ने उनकी औकात भी याद दिला दी कि भाईजान आप फॉर्म 47 पे आए हुए हैं, तो आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही छोड़ के चले गए। लेकिन सियासतदान, लेकिन उसमें फिर आते हैं वापस कि हमारा आवाम का कसूर है कि हमने इनको अपने सर पे बिठाया हुआ है, आते हैं हम इनको प्रोटोकॉल भी देते हैं, इन पे फूलों की पत्तियां भी फेंकते हैं, यहाँ पे एम्बेसडर देख लें हम, उन वो एक 12, 14, 16, 21, 20 ग्रेड के जो हैं वो आते हैं, लेकिन हम उनको इस तरह हिज एक्सीलेंसी जनाब आ गए हैं, पता नहीं केड़ी तोप है, लेकिन वो होते हैं हमारे मुलाजम है, हमारे लिए आते हैं। ये अभी मैं आपको एम्बेसी का वाकया सुनाता हूँ, अभी दो बच्चियाँ गई थी, एक का पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया था, तो काफी अरसे से उसका बना नहीं है, तो वो बता रही थी कि वहां पे जो बैठे हुए थे उन्होंने जो उनसे सवाल किए हैं, ठीक है, वो आप पहले क्यों नहीं आई, आपने क्यों क्यों नहीं किया, आपने भाईजान आपके पास आई है, आपको जो रिक्वायर है क्या वो लेके आई है कागज या नहीं लेके आई? अच्छा, एक वो रिपोर्ट थी डेनिश में, तो वो कहते हैं ये क्या है, तो कहती है आगे से वो भी बच्ची यहाँ की जमी पली, कहती है कि आपको डेनिश नहीं पढ़नी आती, जाहिर है वो तो पाकिस्तान से, वो कहते हैं नहीं आते, वो उसने फिर बताया कि भाई ये रिपोर्ट इसके लिए है, ठीक है। तो हमारे रवैये जो है ना, हमारा हमने अपने मुलाजमों को भी अपने, लेकिन जो गरीब मुलाजम अपने घर में रखते हैं ना झाड़ू पोछे के लिए, जो सलूक हम उनके साथ करते हैं यकीन करें वो भी जो है ना दिल जला देते हैं, तो लेकिन ये जिनके पास थोड़ा सा आ जाता है ना इख्तियार, आप जाए ना पासपोर्ट बनवाने, वो अगर आपको ना देना चाहे ना तो आपको जलील करते रहेंगे महीना पूरा, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है, हमने ना, लेकिन हमने खुद इन चीजों को जो है वो खराब किया हुआ है, जब तक हम अवाम अपना हक खुद नहीं मांगेंगे ना इन लोगों से जिनको हम अपनी पैसों से तनख्वाह देते हैं, तब तक ये लोग भी जो है ना वो नहीं सुधरेंगे।
1: चले जी, ये हमारा आलमिया है और अभी पता नहीं कहाँ तक ये चलेगा, उम्मीद ये की जाती
2: है कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनोगे,
1: आने वाला वक्त हम ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा आएगा। इसके लिए वही बात मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना पड़ेगा। डॉक्टर सलमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बातें बहुत करने वाली थी लेकिन वक्त की कमी की वजह से, लेकिन जो भी हुई जितनी भी हुई अच्छी हुई, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से भी कोई ऐसी बात हमारे देखने और सुनने वालों को अगर नागवार गुजरी हो तो उसके लिए माजरत भी चाहते हैं, हमारी कोशिश हमेशा यही होती है। जी,
0: लास्ट बात करूंगा मैं, आजकल की जो नौजवान नस्ल है, मैं उनको सिर्फ एक पैगाम देना चाहूंगा कि जिनके वालिदैन हयात हैं, जिनके वालिदैन वफात हो गए हैं, उनको अल्लाह मगफिरत दे, और जिनके वालिदैन हयात हैं तो उनकी जितनी हो सके उनकी खिदमत करें, और अपने जो कि फील्ड है उसमें आप मेहनत करें, उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, तो इंशाल्लाह आपका हर काम आसान होगा। और मैं इस चीज़ को मैं ख़ुद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अपने वालदेन को बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करें, उनको खुश रखें, तो इंशाल्लाह आप इस दुनिया में कामयाब हो जाएंगे।

0: थैंक यू सो मच।
1: ठीक है जी,
0: ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम, और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क हमेशा के लिए पाइंदाबाद। शुक्रिया।